0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। बंदे का नाम है अदनान और काम है बस आपके साथ गुफ्तगू करना, बातें करना। सो एग्जैक्टली 7:12 का वक्त हो चुका है। आई होप कि आपकी नींद खुल गई होगी। उठिए उठिए, सुबह का वक्त हो गया है और इसी के साथ आज की शो का आगाज करने का भी वक्त हो चुका है। तो चलिए फिर शो का आगाज करते बट एक बढ़िया से सुविचार के साथ, क्योंकि अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत हुई ना तो दिन आपका अच्छा गुजरने ही वाला है। तो आज सुविचार है आचार्य विनोबा भावे जी का और आज आचार्य जी की जयंती भी है। तो विनोबा भावे जी कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को भगवान की पूजा समझकर करें तो काम का बोझ कभी महसूस नहीं होगा, बल्कि हर काम में आनंद आएगा। बात तो एकदम सही है यार। तो ये बात याद रखिएगा विनोबा भावे जी की, और ये जो स्वीचार है अपने जिंदगी में अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और आज विनोबा भावे जी की जयंती है तो इस पर हमारी बातें होगी ही कुछ ही देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: बाळा, मी काल माझ्या पुतण्याच्या घरी जाऊन आलो। मी तर पाहून थक्कच झालो। ते लोक दिवसभर एसी चालवतात, रोज वॉशिंग मशीन लावतात, घरात दोन दोन फ्रीज आहेत, पण त्यांचं वीज बिल किती येतं माहितीये? शून्य। मी विचारलं तर पुतण्या म्हणाला, काका सगळी वर्षाची कृपा आहे। म्हणजे सोलर पॅनलची। मी विचार केला, आता बसवायलाच पाहिजे।
2: PM सूर्य घर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा PM सूर्य घर .gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। दोस्तों, आज 11 सितंबर एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे और वैचारिक अक्षरों से दर्ज है। आज भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती। शायद आज की पीढ़ी उन्हें सिर्फ इतिहास की किताबों के एक पैराग्राफ के जरिए जानती है, लेकिन मैं आज आपको उनके जीवन का वो पहलू बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि साल 1940 में जब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी, तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में विनायक हरहरी भावे इन्हीं को चुना था, जिन्हें दुनिया विनोबा भावे के नाम से जानती है। गांधी जी उनके आध्यात्मिक और शांत स्वभाव के इस कदर मुरीद थे कि उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी मानते थे। विनायक भावे जी का जन्म महाराष्ट्र के गागोदे गांव में हुआ था। बचपन से उनका मन अध्यात्म और देश सेवा में ऐसा रमा कि उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्रियां जला दी और घर छोड़ दिया। उन्होंने समाज को बदलने के लिए कभी लाठी या हथियार नहीं उठाए। उन्होंने एक ऐसा अनोखा रास्ता चुना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 1951 में उन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, इसे दुनिया की पहली और एकलौती रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। विनोबा भावे जी लगातार 13 सालों तक पूरे भारत में पैदल चलते रहे। उन्होंने करीब 70,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। वो गांव-गांव जाते, बड़े बड़े जमींदारों से मिलते और उनसे केवल एक ही बात करते, अगर आपके 4 बेटे हैं तो मुझे अपना 5वां बेटा समझिए और 5वां हिस्सा इन भूमिहीन गरीबों के नाम कर दीजिए। और चमत्कार देखिए, उनकी इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर जमींदारों ने खुशी खुशी 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन दान में दी थी। एक ऐसे महान दार्शनिक जिन्होंने भगवद गीता का मराठी में गीताई नाम से बेहद आसान ट्रांसलेशन किया था, उन्हें आज के दिन हमारा शत शत नमन। और भी हम बातें करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. और आज हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें हर दूसरी प्रोफाइल पर इन्फ्लुएंसर, चेंज मेकर या तो फिर सोशल वर्कर लिखा हुआ दिखता है. लेकिन आज यानी कि 11 सितंबर को हमें भारत के कैसे ओरिजिनल चेंज मेकर को याद करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी 5G इंटरनेट, बिना किसी PR टीम या बिना किसी वेरीफाई ब्लू टिक के पूरे देश में कैसी वैचारिक लहर ला दी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य विनोबा भावे जी की. अब जरा सोच कर देखिए, आज के इस दौर में अगर कोई आपसे गाड़ी की चाबी या एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मांग ले तो हम 100 बार सोचते हैं. लेकिन विनोबा भावे जी के विचारों में और उनकी मीठी आवाज में वो जादू था कि बड़े बड़े रईस और जमींदार भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे. उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े और गरीब वर्गों को हक दिलाने के लिए भूदान आंदोलन चलाया. सिर्फ अपनी पैदल यात्राओं के दम पर उन्होंने लोगों का दिल पिघलाया और लाखों एकड़ जमीन उन गरीबों को दिलवाई. इसे कहते असली रिवॉल्यूशन. विनोबा भावे सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक कमाल के स्कॉलर भी थे. उन्हें कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी समेत बहुत सारी भाषाएं आती थी. समाज सेवा के क्षेत्र में उनके इसी अभूतपूर्व योगदान की वजह से उन्हें साल 1958 में दुनिया का बेहद प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था. और आपको गर्व होना चाहिए कि ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे. बाद में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था. तो आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह दिन है ये सोचने का कि हम अपने समाज को वापस क्या दे रहे हैं. आचार्य विनोबा भावे की इस जज्बे को सलाम. बने रहिए मेरे यानी कि RJ अदनान के साथ ऑन MGM 90.8 FM.

0: हम सभी की जिंदगी ऑल इज वेल है, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रेस आते हैं, तो दूर करने के लिए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, तो उसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं?
1: हम देखिए तीन चीजों से पहचान सकते हैं। पहला है फिजिकल, कि जैसे लगातार सर दर्द होना या एसिडिटी रहना या गर्दन, कंधे, पेट में दर्द रहना, तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। थका हुआ महसूस करना, शरीर में भारीपन लगना, ये भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। दूसरा है देखिए हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स, जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, काम में मन नहीं लगना या ज्यादा नींद आना। जैसे कुछ लोग ऑफिस में आते ही उनको लगता है अरे बहुत नींद आ रही है। अब देखिए इसके भी दो कारण है, कि सच में उनकी नींद नहीं हुई है, क्योंकि शायद वो घर पे भी ऑफिस का काम लेके बैठे हों। और फिर दूसरा है कि ये स्ट्रेस का अर्ली साइन भी माना जा सकता है। और तीसरा है देखिए कॉग्निटिव, कि हमारा फोकस जो है वो कम होना, तो फोकस करने में दिक्कत आना और कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, फिर हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सब कॉग्निटिव चीजें हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस की अर्ली साइंस है।
0: तो आप में से भी ऐसा किसी को लग रहा है कि यार वो स्ट्रेस में है और उसके अंदर जो साइन अभी मैम ने बताया वैसे नजर आ रहे हो, तो भाई थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा और हेल्थ को वेल रखिएगा। बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए और जिंदगी में इतना स्ट्रेस मत बढ़ाइएगा कि आपकी हेल्थ खराब हो, क्योंकि हेल्थ वेल रहेगी तो सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा। स्टे ट्यून्ड।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो आपका पसंदीदा शो ऑल इज वेल ऑन MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी महफिल सजाते फरमाइशों के साथ आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज हमारे पास फरमाइश आई है प्रेम काले जी की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही खास बेहतरीन सा सदाबहार गाना फरमाइश में बताया है, जो पेश है फिल्म कर्ज का सुपरहिट गाना ओम शांति ओम।

0: ऋषि कपूर जी की वो जादुई अदा और किशोर कुमार जी की आवाज। चलिए खो जाते इस क्लासिकल धुन में, और सच में ये गाना ना तो महफिल सजा ही देता है। बाय द वे, आपकी भी कोई गाने की फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080। फिलहाल फरमाइश पर ये गाना एंजॉय कीजिए एंड सुनते रहिए।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: सावन का महीना पवन करे सोर।

0: れそーる。
1: ババ抜かれショール。
0: あれ、ババショールね。ソール、ソール、ソール。

0: बहुत ही जरूरी अपडेट है, जरा गौर से सुनिएगा। तो बात कुछ ऐसी कि हम सभी ने SIR फॉर्म तो फिलअप किया होगा, उस बारे में तो पता ही होगा हम सभी को। एंड वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जी मतदान यादी एरर आए, पहली प्रतिची आ लिया है, यानी कि जो नई लिस्ट है वो आ चुकी है, उसकी फर्स्ट कॉपी। अब हम सबको करना क्या है, उस लिस्ट में हमारा नाम चेक करना है कि नवीन मतदान यादीत माझं नाव आहे की नाही। आणि हो, जर तुमचं नाव नसेल तर ते नाव ॲड करण्यासाठी तुम्हाला 30 सप्टेंबर पर्यंत वेळ आहे, त्यासाठी तुम्ही ॲप्लिकेशन करा आणि तुमचं नाव त्यात ॲड करा। मतलब जिनका नाम उस नए लिस्ट में नहीं आया है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। कहना तो बहुत सारे लोगों का इस नए लिस्ट में नाम आया ही नहीं है, आणि अनेक जणांनी तर SIR फॉर्म फिलअपच केला नव्हता, असेही लोक आहेत। तर त्यांनी सुद्धा आता तो फॉर्म फिलअप करा, त्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागेल, त्यासाठी तुम्हाला तुमचे नगरसेवक आहेत ते मदत करू शकतील। और हाँ, इसी के साथ अगर इस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है तो ये चेक करना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे भी अपने मोबाइल के जरिए वो नाम चेक कर सकते हो। बस SMS ओपन कीजिएगा, बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा आपका वोटर ID नंबर, जो वोटर ID के ऊपर नंबर होता है वो बस आपको मैसेज करना है, एंड फिर सामने से आपको रिप्लाई आएगा आपका नाम नए वोटर ID लिस्ट में है या नहीं। तो सिंपल प्रोसेस है, फॉलो कीजिएगा और नंबर याद रखिए 1950 एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है.

0: सुनो सुनो सुनो शहरवासियों, फोटो क्लिक करो और पैसा जीतो। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। तो ऐसा एक ऐप लॉन्च किया है अपने शहर में नहीं, पुणे में। पुणे ट्रैफिक पुलिस ने PTP नावाचा एक ऐप तैयार केलेला है। आणि या ऐपचं काम काय, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करे, सिग्नल तोड़ के चला जाए, गलत जगह से यू टर्न ले या फिर रॉन्ग साइड से चला आ रहा हो, तो उसकी फोटो क्लिक करो, इस ऐप के ऊपर अपलोड करो और जो आम आदमी जितने सारे फोटो अपलोड करेगा उसको उतना पैसा यानी कि इनाम मिलने वाला है। तकरीबन 50,000 रुपये से ज़्यादा इनाम उस शख्स को मिलने वाला है जो ऐसे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करता है ना, उनकी फोटो क्लिक करके पुलिस को देगा। और इसका मकसद क्या है कि शहर में जितना भी ट्रैफिक जाम होता है और जो लोग रूल्स ब्रेक करते हैं तो वैसे लोग सुधर जाए आणि त्या लोकांना शिस्त लागावी, यासाठी हा नवीन ऐप तैयार करण्यात आलेला आहे, PTP। सो मेरे खुराफती माइंड में एक ऐसा सवाल आया कि अगर ऐसा ही ऐप अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी आ गया तो जैसे पुणे में है PTP, वैसे अपने शहर में आ सकता है CSTP, छत्रपति संभाजीनगर ट्रैफिक पुलिस ऐप। तो अगर इस ऐप के जरिए भी हम सभी लोग अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहा हो तो उसकी फोटो क्लिक करके ऐप के ऊपर अपलोड करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन हम पुलिस तक प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोगों में वो आदत लग जाए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पुलिस की नजर ना सही लेकिन आम आदमी की नजर तो हम सभी के ऊपर है। और हाँ, जो फोटो क्लिक कर रहा है उसने भी अगर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किया ना, तो आपकी भी कोई ना कोई फोटो क्लिक करने ही वाला है, ये भी समझिएगा। सो ऐसा कुछ इनिशिएटिव पुणे पुलिस ने उठाया है, अपने शहर की ट्रैफिक पुलिस भी ऐसा कदम उठा सकती है ताकि अपना शहर भी बहुत जल्द ट्रैफिक फ्री हो जाए और हर कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे। सो ये ऐसा ख्याल था मेरे माइंड में, अगर अपने यहाँ पर भी ऐसे एक ऐप आ गया तो मजे तो है ही। बाय द वे, आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा ऐप हमारे शहर में आना चाहिए या नहीं? DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, और बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: सिगरेट पीते हो?
1: नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीते भी नहीं होगे, नुकसान आपको हो ही रहा है।
0: तो बात कुछ ऐसी है कि अरे यार, मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ।
1: हाँ, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है और उसके साथ कंपनी देने मैं भी जाता हूँ। आखिर दोस्त का फर्ज बनता है दोस्त को टाइम देना।
0: बात तो सही है, लेकिन इस चक्कर में आप भी ना तो एक्टिव स्मोकर ना सो, लेकिन पैसिव स्मोकर हो रहे हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्मोकर, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव वो होता है जो स्मोकिंग करता है, और पैसिव वो होता है जो उसके साइड में बैठता है और वो जो धुआं फेंकता है बाहर, वही धुआं फिर अपने अंदर लेता है ना, अपने आप वो चला जाता है। दैट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकर। तो इसी के साथ आप बन गए स्मोकर ही। सेकंड हैंड स्मोकिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हार्मफुल केमिकल ना आसपास के लोगों की भी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहां तक के हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सीरियस प्रॉब्लम भी उन्हें फेस करना पड़ती है। तो इस बारे में एक रिसर्च किया गया था, तो उस रिसर्च में ना तो कुछ बेहतरीन से और बहुत ही डेंजरस नंबर सामने आए हैं, जिसमें ऐसा दिखा है कि इंडिया में स्मोकिंग की वजह से जो डेथ होते हैं ना, तो उतना ही रेशियो है पैसिव स्मोकर के डेथ का भी। क्या कुछ है उस रिपोर्ट में, कैसी आई है और कितना डेंजर हो सकता है पैसिव स्मोकिंग भी, बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर में। बस याद रखिए, भले आप सिगरेट ना पीते हो, फिर भी आप अगर सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ रहे हो तो आप भी स्मोकिंग कर रहे हो, समझे? Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एक मिनट, आप सिगरेट पीते हो ना? नहीं पीते? चलो अच्छी बात, आपका दोस्त पीता है और आप उसके साथ बैठते हो, पक्का ना? तो यानी कि आप भी स्मोकिंग करते ही हो। अब आप सवाल करोगे कि यार मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि तू भी स्मोकिंग करता है? तो भाई देर इज टू टाइप्स ऑफ स्मोकर, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। यानी कि जो सिगरेट पीता है उसके साथ अगर आप बैठ रहे हो तो आप बन चुके हो पैसिव स्मोकर। और इसे एक और लफ्ज है, दैट्स कॉल्ड सेकेंड हैंड स्मोकिंग। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर जो कोई सेकेंड हैंड स्मोकर हो यानी कि पैसिव स्मोकर हो, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें तकरीबन 20-25% धोखा बढ़ जाता है मौत का। और इसी के साथ हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे बीमारियां भी बढ़ सकती है अगर आप पैसिव स्मोकर होगे, यानी कि सिगरेट पीने वालों के साथ अगर आप बैठते होगे। इसी के साथ अपने पूरे भारत में 1990 में स्मोकिंग से रिलेटेड डेथ लगभग 2 लाख समथिंग थे, वही बढ़कर आज के वक्त में तकरीबन 3-4 लाख लोगों की मौत हर साल स्मोकिंग की वजह से होती है, ये एक रिपोर्ट में आया है। तो तकरीबन 35 साल में 50% की बढ़ोतरी हो गई इन सब चीजों में। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लेकिन उस फिक्र के धुएं के साथ आप भी कब उड़ जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ आप तो खुद सिगरेट पीते हो, लेकिन जो बेचारा आपका दोस्त वो नहीं पीता है, उसकी भी जान आप खतरे में डाल रहे हो। तो बात सिंपल है, सिगरेट तू पीता है भाई, लेकिन तेरी वजह से तेरे दोस्त के फेफड़े भी खराब हो रहे, तो तू एक साथ दोनों का नुकसान करवा रहा है, तो सुधर जाओ। वरना जो कुछ मैंने अभी नंबर तुझे बताया, इतनों की डेथ हो गई, तो अगले साल तो अगली बार इसमें तेरा भी नंबर ऐड हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ बुरी चीजें खत्म कर दो। अब इसमें कुछ होशियार सिगरेट वाले होते जो कहेंगे कि हाँ हमें पता है सिगरेट बुरी है, इस वजह से हम उसे पीकर खत्म कर रहे हैं। बहुत पांचट जो कि भाई है, तो तू रहने दे, अति शाहने जेलो का है, सुधरा। बाकी तो भाई मेरा काम है बताना, वरना आप कहोगे कि तू क्या जाने सिगरेट का मजा, नहीं जानना है, रहने दो, बस सुधर जाओ एंड सुनते रहो।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: अरे बस करो भाई, बस भी कर दो। हो गई सबकी सैर 80s में जाकर वापस आने की। पिछले दो दिन से देखा जा रहा है कि बस यही ट्रेंड सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहा है, 80s वाला दौर। और जहां देखो वहां पर ऐसा लग रहा है कि हमने इंस्टाग्राम ओपन किया ना, अगर हमने ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो हमें ये संसार एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो लगता है नहीं किया होता, इस वजह से मैंने भी ना ये ट्रेंड को फॉलो किया था। बाय द वे पिछले दो दिन में तो आपने बहुत सारे फोटोज वीडियोज देखे होगी 80s के दौर की। एंड एक कॉमन चीज नोटिस की आपने, उस दौर का फैशन जो था ना आज भी वैसा ही है। देखो उस दौर में कैसे एकदम ढीले ढाले कपड़े थे, यानी कि बैगी का एक फैशन था, और आज हम देखते हैं आज के वक्त में 2026 में भी बैगी फैशन वापस आया है। हाँ थोड़ा चेंजेस आ गया है कलर में, पैटर्न में, लेकिन नाम तो वही है ना, बैगी वाला फैशन जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी पहना करते थे, वैसे कपड़े आज के दौर में भी हम पहनते। इस वजह से कोई भी फैशन पुराना नहीं होता। एंड एक बात तो साबित हुई है, भले हम फ्यूचर में हम बहुत आगे चले जाए, आज से और 10 15 20 साल बाद भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए, लेकिन जो नॉस्टैल्जिक एंड जो रेट्रो टच होता है ना, उसी का कोई जवाब नहीं है। हर किसी ने अपनी 80s के दौर की एक फोटो AI के जरिए जनरेट की थी और पोस्ट की थी, उस पे हम कितने सुंदर लग रहे थे ना। बात वही है भाई, नजरिए की बात है, जैसे हो वैसे हो, एकदम आप भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हो, ये याद रखिएगा। बाकी तो अगर आपने अब तक ये ट्रेंड को फॉलो नहीं किया होगा या तो फिर आपको भी ऐसे फोटो जनरेट करना है, तो बस ChatGPT पर जाइए और प्रॉम्प्ट लिखिए आपकी फोटो के साथ, जनरेट दिस फोटो इनटू 80s स्टाइल बॉलीवुड, बाकी तो अपने आप फोटो बनाकर देगा ही। खैर ट्रेंड आते हैं जाते हैं, बस इसका मजा उठाते रहिए और बाकी तो मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सुपर डुपर हिट गानों का ये सफर। स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8.

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजी अदनान आपके साथ है।
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकात तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजी अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी व्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार, मैं ज्ञानी आदमी हूं, RJADNAN ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।

सुंदर फिल्म का ये गाना 30 साल पुराना है। ये गाना बॉम्बे रॉकर्स इस बैंड ने बनाया जो कि यूरोप में शुरू हुआ था पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके। बैंड के सिंगर नवजोत सिंह जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई म्यूजिशियन थॉमस से। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बैंड का पहला एल्बम रिलीज किया। देश विदेश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम हो गई। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले गाने से।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफजीएम 90.8 एफएम।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM साथ है।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: मेरी खाली सी जगह।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: FGM 90.8 FM साथ है।

MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: पक्का जा रहे
1: वेट आई थिंक वी शुड गो दैट वे
0: ये तो खराब है
1: ये मेरा लकी चार्म है और ये मुझे हमेशा राइट डायरेक्शन देता है समटाइम्स इन लाइफ यू जस्ट हैव टू लेट इट गो और उसी फ्लो में

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम.

0: क्या?
1: तू तो फंडा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूं।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.

जालंधर फिल्म का ये गाना 30 साल पुराना है। ये गाना बॉम्बे रॉकर्स इस बैंड ने बनाया, जो कि यूरोप में शुरू हुआ था पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके। बैंड के सिंगर नवजोत सिंह जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई म्यूजिशियन थॉमस से। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बैंड का पहला एल्बम रिलीज किया। देश विदेश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले गाने से।

0: सिगरेट पीते हो?
1: नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीते भी नहीं होगे, नुकसान आपको हो ही रहा है।
0: तो बात कुछ ऐसी है कि अरे यार, मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ।
1: हाँ, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है और उसके साथ कंपनी देने मैं भी जाता हूँ। आखिर दोस्त का फर्ज बनता है दोस्त को टाइम देना।
0: बात तो सही है, लेकिन इस चक्कर में आप भी ना तो एक्टिव स्मोकर ना सो लेकिन पैसिव स्मोकर हो रहे हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्मोकर, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव वो होता है जो स्मोकिंग करता है और पैसिव वो होता है जो उसके साइड में बैठता है और वो जो धुआं फेंकता है बाहर वही धुआं फिर अपने अंदर लेता है ना, अपने आप वो चला जाता है। दैट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकर। तो इसी के साथ आप बन गए स्मोकर ही। सेकंड हैंड स्मोकिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हार्मफुल केमिकल ना आसपास के लोगों की भी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहाँ तक के हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सीरियस प्रॉब्लम भी उन्हें फेस करना पड़ती है। तो इस बारे में एक रिसर्च किया गया था, तो उस रिसर्च में ना तो कुछ बेहतरीन से और बहुत ही डेंजरस नंबर सामने आए हैं, जिसमें ऐसा दिखा है कि इंडिया में स्मोकिंग की वजह से जो डेथ होते हैं ना, तो उतना ही रेशियो है पैसिव स्मोकर के डेथ का भी। क्या कुछ है उस रिपोर्ट में, कैसी आई है और कितना डेंजर हो सकता है पैसिव स्मोकिंग भी, बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर में। बस याद रखिए, भले आप सिगरेट ना पीते हो, फिर भी आप अगर सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ रहे हो तो आप भी स्मोकिंग कर रहे हो, समझे? स्टे ट्यून।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, अमृतनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

एक मिनट, आप सिगरेट पीते हो ना? नहीं पीते? चलो अच्छी बात, आपका दोस्त पीता है और आप उसके साथ बैठते हो, पक्का ना? हाँ, तो यानी कि आप भी स्मोकिंग करते ही हो। अब आप सवाल करोगे कि यार मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि तू भी स्मोकिंग करता है? तो भाई, देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्मोकर, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। यानी कि जो सिगरेट पीता है उसके साथ अगर आप बैठ रहे हो तो आप बन चुके हो पैसिव स्मोकर। और इसे एक और लफ्ज है, दैट्स कॉल्ड सेकेंड हैंड स्मोकिंग। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर जो कोई सेकेंड हैंड स्मोकर हो यानी कि पैसिव स्मोकर हो, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें तकरीबन 20-25% धोखा बढ़ जाता है मौत का। और इसी के साथ हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे बीमारियां भी बढ़ सकती है अगर आप पैसिव स्मोकर हो गए, यानी कि सिगरेट पीने वालों के साथ अगर आप बैठते हो गए। इसी के साथ अपने पूरे भारत में 1990 में स्मोकिंग से रिलेटेड डेथ लगभग 2 लाख समथिंग थे, वही बढ़कर आज के वक्त में तकरीबन 3-4 लाख लोगों की मौत हर साल स्मोकिंग की वजह से होती है, ये एक रिपोर्ट में आया है। तो तकरीबन 35 साल में 50% की बढ़ोतरी हो गई इन सब चीजों में। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लेकिन उस फिक्र के धुएं के साथ आप भी कब उड़ जाओगे या आपको भी पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ, आप तो खुद सिगरेट पीते हो लेकिन जो बेचारा आपका दोस्त वो नहीं पीता है, उसकी भी जान आप खतरे में डाल रहे हो। तो बात सिंपल है, सिगरेट तू पीता है भाई, लेकिन तेरी वजह से तेरे दोस्त के फेफड़े भी खराब हो रहे, तो एक साथ दोनों का नुकसान करवा रहा है। तो सुधर जाओ, वरना जो कुछ मैंने अभी नंबर तुझे बताया, इतनों की डेथ हो गई तो अगले साल, तो अगली बार इसमें तेरा भी नंबर ऐड हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बुरी चीजें खत्म कर दो। अब इसमें कुछ होशियार सिगरेट वाले होते जो कहेंगे कि हाँ हमें पता है सिगरेट बुरी है, इस वजह से हम उसे पीकर खत्म कर रहे हैं। बहुत पांचट जो कि भाई है, तो तू रहने ही दे, अति शाहनी जेलो का है, सुधरा। बाकी तो भाई मेरा काम है बताना, वरना आप कहोगे कि तू क्या जाने सिगरेट का मजा, नहीं जानना है, रहने दो, बस सुधर जाओ एंड सुनते रहो। Only on MGM 90.8.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: बहुत ही जरूरी अपडेट है, जरा गौर से सुनिएगा। तो बात कुछ ऐसी कि हम सभी ने SIR फॉर्म तो फिलअप किया होगा, उस बारे में तो पता ही होगा हम सभी को। एंड वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जी मतदान यादी येणार आहे, पहली प्रत तिची आलेली आहे, यानी कि जो नई लिस्ट है वो आ चुकी है, उसकी फर्स्ट कॉपी। अब हम सबको करना क्या है, उस लिस्ट में हमारा नाम चेक करना है कि नवीन मतदान यादीत माझं नाव आहे कि नाही। आणि हो, जर तुमचं नाव नसेल तर ते नाव ॲड करण्यासाठी तुम्हाला 30 सप्टेंबर पर्यंत वेळ आहे, त्यासाठी तुम्ही ॲप्लिकेशन करा आणि तुमचं नाव त्यात ऐड करा। मतलब जिनका नाम उस नए लिस्ट में नहीं आया है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। कहना तो बहुत सारे लोगों का इस नए लिस्ट में नाम आया ही नहीं है, आणि अनेक जणांनी तर SIR फॉर्म फिलअपच केला नव्हता, असेही लोक आहेत। तर त्यांनी सुद्धा आता तो फॉर्म फिलअप करा, त्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागेल, त्यासाठी तुम्हाला तुमचे नगरसेवक आहेत ते मदत करू शकतील। और हाँ, इसी के साथ अगर इस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है तो ये चेक करना आप ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे भी अपने मोबाइल के जरिए वो नाम चेक कर सकते हो। बस SMS ओपन कीजिएगा, बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा आपका वोटर आईडी नंबर, जो वोटर आईडी के ऊपर नंबर होता है वो बस आपको मैसेज करना है, एंड फिर सामने से आपको रिप्लाई आएगा आपका नाम नए वोटर आईडी लिस्ट में है या नहीं। तो सिंपल प्रोसेस है, फॉलो कीजिएगा और नंबर याद रखिए 1950 एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ

0: सुनो सुनो सुनो शहरवासियों, फोटो क्लिक करो और पैसा जीतो। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। तो ऐसा एक ऐप लॉन्च किया है अपने शहर में नहीं, पुणे में। पुणे ट्रैफिक पुलिस ने पीटीपी नावाचा एक ऐप तैयार केलेला आहे। आणि या ऐपचं काम काय, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करे, सिग्नल तोड़ के चला जाए, गलत जगह से यू टर्न ले या फिर रॉन्ग साइड से चला आ रहा हो, तो उसकी फोटो क्लिक करो, इस ऐप के ऊपर अपलोड करो और जो आम आदमी जितने सारे फोटो अपलोड करेगा उसको उतना पैसा यानी कि इनाम मिलने वाला है। तकरीबन 50,000 रुपये से ज़्यादा इनाम उस शख्स को मिलने वाला है जो ऐसे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करता है ना, उनकी फोटो क्लिक करके पुलिस को देगा। और इसका मकसद क्या है कि शहर में जितना भी ट्रैफिक जाम होता है और जो लोग रूल्स ब्रेक करते हैं तो वैसे लोग सुधर जाए आणि त्या लोकांना शिस्त लागावी, यासाठी हा नवीन ऐप तैयार करण्यात आलेला आहे पीटीपी। सो मेरे खुराफती माइंड में एक ऐसा सवाल आया कि अगर ऐसा ही ऐप अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी आ गया तो जैसे पुणे में है पीटीपी, वैसे अपने शहर में आ सकता है सीएसटीपी, छत्रपति संभाजीनगर ट्रैफिक पुलिस ऐप। तो अगर इस ऐप के जरिए भी हम सभी लोग अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहा हो तो उसकी फोटो क्लिक करके ऐप के ऊपर अपलोड करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन हम पुलिस तक प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोगों में वो आदत लग जाए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पुलिस की नजर ना सही लेकिन आम आदमी की नजर तो हम सभी के ऊपर है। और हाँ, जो फोटो क्लिक कर रहा है उसने भी अगर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किया ना, तो आपकी भी कोई ना कोई फोटो क्लिक करने ही वाला है, ये भी समझिएगा। सो ऐसा कुछ इनिशिएटिव पुणे पुलिस ने उठाया है, अपने शहर की ट्रैफिक पुलिस भी ऐसा कदम उठा सकती है ताकि अपना शहर भी बहुत जल्द ट्रैफिक फ्री हो जाए और हर कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे। सो ये ऐसा ख्याल था मेरे माइंड में, अगर अपने यहाँ पर भी ऐसा एक ऐप आ गया तो मजे तो है ही। बाय द वे, आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा ऐप हमारे शहर में आना चाहिए या नहीं? DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, और बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

अरे बस करो भाई, बस भी कर दो। हो गई सबकी सैर 80s में जाकर वापस आने की। पिछले दो दिन से देखा जा रहा है कि बस यही ट्रेंड सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहा है, 80s वाला दौर। और जहां देखो वहां पर ऐसा लग रहा है कि हमने इंस्टाग्राम ओपन किया ना, अगर हमने ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो हमें ये संसार एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो लगता है नहीं किया होता, इस वजह से मैंने भी ना ये ट्रेंड को फॉलो किया था। बाय द वे पिछले दो दिन में तो आपने बहुत सारे फोटोज वीडियोज देखे होंगे 80s के दौर की। एंड एक कॉमन चीज नोटिस की आपने, उस दौर का फैशन जो था ना आज भी वैसा ही है। देखो उस दौर में कैसे एकदम ढीले ढाले कपड़े थे, यानी कि बैगी का एक फैशन था। और आज हम देखते हैं आज के वक्त में 2026 में भी बैगी फैशन वापस आया है। हाँ थोड़ा चेंजेस आ गया है कलर में, पैटर्न में, लेकिन नाम तो वही है ना, बैगी वाला फैशन जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी पहना करते थे, वैसे कपड़े आज के दौर में भी हम पहनते। इस वजह से कोई भी फैशन पुराना नहीं होता। एंड एक बात तो साबित हुई है, भले हम फ्यूचर में हम बहुत आगे चले जाए, आज से और 10 15 20 साल बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन जो नॉस्टैल्जिक एंड जो रेट्रो टच होता है ना, उसी का कोई जवाब नहीं है। हर किसी ने अपनी 80s के दौर की एक फ़ोटो AI के ज़रिए जनरेट की थी और पोस्ट की थी, उस पर हम कितने सुंदर लग रहे थे ना। बात वही है भाई, नज़रिए की बात है, जैसे हो वैसे हो, एकदम आप भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हो, ये याद रखिएगा। बाकी तो अगर आपने अब तक ये ट्रेंड को फॉलो नहीं किया होगा या तो फिर आपको भी ऐसे फोटो जनरेट करना है, तो बस ChatGPT पर जाइए और प्रॉम्प्ट लिखिए आपकी फोटो के साथ, जनरेट दिस फोटो इनटू 80s स्टाइल बॉलीवुड, बाकी तो अपने आप फोटो बना कर देगा ही। पर ट्रेंड आते हैं जाते हैं, बस इसका मजा उठाते रहिए और बाकी तो मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सुपर डुपर हिट गानों का ये सफर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.5।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: हेलो हाय नमस्कार छत्रपति संभाजी नगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।